हसमुख मंडालिया स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखर्जी स्वर में संत कबीरदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग नंद पर ख्याल सुनवाएंगे. कलाकार हैं गौरी राय चौधरी. आपके साथ तबले पर हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर हैं पिंटू रॉय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to Khayal in the Rag Nand. Our artist is Gauri Roy Chaudhuri. Accompanying her on the tabla is Tarun Roy and on the harmonium is Pintu Roy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नंद पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थी गौरी राय चौधरी। आपके साथ तबले पर थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर थे पिंटू रॉय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपके सामने राग किरवाणी पर सरोद वादन सुनवाएंगे। कलाकार हैं अनिमा दास। आपके साथ तबले पर हैं अशोक राय चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग किरवाणी पर सरोद वादन। कलाकारा हैं अनिमा दास।
1: You were listening to a khayal in the rag Nand. Our artist was Gauri Roy Chaudhuri. Accompanying her on the tabla was Tarun Roy and on the harmonium was Pintu Roy. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sarod recital. Listen to a sarod recital in the rag Kirvani. Our artist is Anima Das. Accompanying her on the tabla is Ashok Roy Chaudhuri.

0: अभी आप राग किरवाणी पर सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थी अनिमा दास, आपके साथ तबले पर थे अशोक राय चौधरी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in the rag Kirvani. Our artist was Anima Das. Accompanying her on the tabla was Ashok Roy Chaudhuri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बांसुरी वादन. कलाकार हैं पंडित रूपक कुलकर्णी. सर्वप्रथम आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मारवा. विलंबित और द्रुतगत एक ताल में निबद्ध है.
2: लिसन टू हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित रूपक कुलकर्णी प्रेजेंटिंग राग मारवा विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू एक ताल.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। पंडित रूपक कुलकर्णी से बांसुरी पर आप सुन रहे थे राग मारवा। तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राज देव और बांसुरी पर स्वर साथ दे रहे थे अवधूत फड़के। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित रूपक कुलकर्णी प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन, जिसमें आप सुनेंगे आलाप जोड़ झाला, मध्यलयगत मत ताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग टू राग मारवा ऑन फ्लूट बाय पंडित रूपक कुलकर्णी। अकंपनिंग हिम ऑन तबला वॉज मुकुंद राज देव एंड स्वर साथ ऑन बांसुरी by Avdhoot Phadke. Continuing the concert, now listen to Raag Yaman, in which you will listen to Aalap Jod Jhala, Madhyalaygat said to Mattal, and Drutgat said to Teen Tal.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित रूपक कुलकर्णी का बांसुरी वादन। तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राज देव और बांसुरी पर स्वर साथ दे रहे थे अवधूत फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है। हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट रिसाइटल by Pandit Rupak Kulkarni. Accompanying him on tabla was Mukund Raj Dev and Swarasath on Bansuri by Avdhut Phadke. This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH. Anytime Indian music.

0: क्लासिकल म्यूजिक चैनल।
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है कुमुद दीवान का गायन। पहले सुनिए खमाज ठुमरी, बोल हैं अब न बजाओ श्याम बांसुरिया। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
2: दिस इज अ रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रेंडिशन बाय कुमुद दीवान। फर्स्ट लिसन टू अ खमाज ठुमरी रिसाइटल। द वर्ड्स आर अब ना बजाओ श्याम सूर्या। शी इज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन द तबला, ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन हारमोनियम बाय अशोक कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे खमाज ठुमरी और अब सुनिए मिश्र नट ठुमरी। बोल हैं श्याम बिना चैन ना आवे। तबले पर आतंगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ खमाज ठुमरी रिसाइटल एंड नाउ लिसन टू मिश्र नट ठुमरी। द वर्ड्स आर श्याम बिना चैन ना आवे। शी इज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन द तबला, ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन हारमोनियम बाय अशोक कुमार।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए कुमुद दीवान का गाया दादरा, बोल हैं आया कर कह दो सांवरिया से।
1: इन द एंड लिसन टू अ वोकल रेंडिशन इन दादरा बाय कुमुद दीवान। द वर्ड्स आर आया कर कह दो सांवरिया से।

0: अभी आप कुमुद दीवान का गाया अदरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन दादरा बाय कुमुद दीवान, अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला, ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन हारमोनियम बाय अशोक कुमार। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: कर्नाटक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में मीरिंतवरकु श्रीमति अरुण श्रीमति पद्मल गात्रयुगलम रागम तानम पल्लवी विन्नारु वाद्य सहकारम वायलिन पै श्री द्वारम सत्यनारायण राव मृदंगम पै श्री पी जयभास्कर मीरु विंटुन्नारु भारतीय शास्त्रीय संगीतानि डीटीएच पै निरंतर मीकु अंदिंचे चानल रागम
1: यु आर् लिसनिंग टू ए वोकल ड्यूएट ऑफ रागम तानम पल्लवी बै Shrimati Aruna and Shrimati Padma. They were accompanied on violin by Shri Dwaram Satyanarayan Rao and on mridangam by Shri P. Jayabhaskar. You are listening to Ragam 24/7 DTH Anytime Indian Music.
0: Karnataka Shastri Sangeet Karyakramamlo Nilaya Vidwamsula Vadya Goshti Vintaru. Vadya Sahakaram Venu Pai Shri V. Nagaraju, Violin Pai Shri Dwaram Satyanarayan Rao, Shri Kokkondu Subramanya Sharma, श्री बी एस नारायणन वीण पै श्री पप्पु चंद्रशेखर श्री डी श्रीनिवास क्लारिनेट पै श्री कोट अच्चिबाबू मृदंगम पै श्री नेमानि सोमयाजलु निर्वहण श्री कोकंड सुब्रह्मण्य शर्म कार्यक्रमंलो मुंदुगा विनंडि गिरिराज सुत बंगाला रागंलो त्यागराज स्वामी कृति आदितालम
1: लिसन टू ए कर्नाटक क्लासिकल एंसेंबल कंडक्टेड बै श्री कोकंड सुब्रह्मण्य शर्म The participating artists are Shri V. Nagaraju on flute, Shri Dwaram Satyanarayan Rao, Shri Kokkonda Subramanya Sharma and Shri B. S. Narayanan on violin, Shri Pappu Chandrasekhar and Shri D. Srinivas on veena, Shri Kota Achibabu on clarinet, Shri Nemani Somayajulu on mridangam. The ensemble begins with the composition of Tyagaraja Swami, Giriraja Sutta in Rag Bangala set to Aditala.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित अजय चक्रवर्ती का गायन. सुनिए राग नटभैरव. विलंबित बंदिश एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं पिनकधर शंकर. द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं रतन जड़े मोतियों सो. In the program of Hindustani Classical Music, we are presenting vocal recital by Pandit Ajay Chakravarti. Listen to Raag Nat Bhairav. Vilambit Bandish set to Ektal, Bol Pinak Dhar Shankar. Drut Bandish set to Teen Tal, Bol Ratan Jade Motiyon Soh.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: आप सुन रहे थे राग नट भैरव। तबले पर संगत कर रहे हैं शुभंकर बैनर्जी, सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान और हारमोनियम पर हैं वासंती महापसेकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित अजय चक्रवर्ती प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन। विलंबित बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं सजन गलवा गेंडी डोले। मध्यलय बंदिश झपताल में निबद्ध है, बोल हैं चंद्रमा ललाट पर। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं किनारे किनारे किनारे दरिया।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग नट।

गौरव। अकंपनिंग हिम ऑन तबला शुभंकर बैनर्जी, ऑन सारंगी उस्ताद सुल्तान खान एंड ऑन हारमोनियम वासंती महापसेकर। इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोग्राम पंडित अजय चक्रवर्ती प्रेजेंट्स राग यमन। विलंबित बंदिश सेट टू एकताल, बोल सजन गलवा गेंडी डोले। मध्यलय बंदिश सेट टू झपताल, बोल चंद्रमा ललाट पर। एंड द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल किनारे किनारे किनारे दरिया।

0: अभी आप सुन रहे थे राग यमन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित अजय चक्रवर्ती का गायन। तबले पर संगत कर रहे थे शुभंकर बैनर्जी, सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान और हारमोनियम पर वासंती महापसेकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: That was Raag Yaman. With that, we conclude vocal recital of Pandit Ajay Chakravarti. Accompanied him on tabla, Shubhankar Banerjee, on sarangi, Ustad Sultan Khan, and on harmonium, Vasanti Mahapsekar. This was the contribution of AIR, Mumbai.
1: This is Raagam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रागपुरिया में सितार वादन. आज एक कलाकार हैं शिव शंकर मुखोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मृणमोह सरकार. तो आइए सुनते हैं रागपुरिया में सितार वादन.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a sitar recital in the rag Puriya. Our artist is Shiv Shankar Mukhopadhyay. Accompanying him on the tabla is Mrinmoy Sarkar. Listen now to the sitar in the rag Puriya. Our artist is Shiv Shankar Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप रागपुरिया में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे शिव शंकर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मृण्मय सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Puriya. Our artist was Shiv Shankar Mukhopadhyay. Accompanying him on the tabla was Mrinmay Sarkar. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पखावज वादन. कलाकार है महंत विजय रामदास. सबसे पहले आप पखावज पर चौताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र.

गणपतये कदन्तलम्बोदर करदशोलत्र पुण्ड्रभाललोचन विशाल धृतरुचिरमालवारे सुरपूजित कीर्ति अखंड तट दीन कृतज्ञ मुदित मन पद रजधा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृतकृत गृंगधा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृतकृत गृंगधा।

जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर शीश त्रिपुंड जयति करुणाक अंग भस्म अर्धंग संग धर गरल कंठ धर फणिधर जटाजूट धर मध्य गंग धर कर त्रिशूल धर जयति त्रिपुर वीर भद्र गण हर विरंच सुर सहित मुनीस मनीष करत जय धक धक धक जय जय मन मधारी धक धक धक ज्वाल माल आशुतोष त्रय नेत्र कृपाधर चरण शरण नित ध्यावत गौर वरण भुज इंद्र माल अविनाशी काशी के बासी कैलाशी तुम पार्वती पति नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर।

घिंतरांधा

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर चौताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया पखावज पर ताल धमार। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।
1: धागिन धागिन त्रिकृतकृतकृतकृता धित धित धे धे धे कृतहिता धेता धल धल धल धल धिलांग घतान कृता ट धुम कृतकृता धृकृतक धे धे धाकिट किट धागे तेटे कतिट धा कृतक त्रिकृतकृता त्रिकृतक त्रिकृतकृता धा झमक झूमत सुंड फेरत गया मूर्ति गजाननम त्रिकृतहित धे धे धेत गणपति बाल लाल विशाल रा पुंड्र धग धग ज्योति जगमग धधक धक धक धधक धक धक जेति जय शंकर सुमन एक दंत मूसक वाहनम जय सकल कल्याण प्रद प्रभु धागृत धुम कृत कृत धुम कृत गिरिंगधा धुम कृत गिरिंगधा धुम कृत गिरिंगधा कृत कृत धुम कृत गिरिंगधा धुम कृत गिरिंगधा धुम कृत गिरिंगधा कृत कृत धुम कृत गिरिंगधा धुम कृत गिरिंगधा धुम कृत गिरिंगधा धागिन धागिन।

बम बम शिव शिव अगड़ बम डिम डम डम डिम डिम डिम बाजत डिम डिम डिम डिम टिक डिम डिम धम कृत धम कृत धम कृत कृत का धम कृत करेंगे बम बम उपकार करत फणि धर भुजंग सिर धर ति धर ति धर धर धर धवल धार गंगा छ विचार ति धृकृत धृकृत धृकृत धृकृत ता धृकृत धृकृत ता धृकृत धृकृत ताधा जटा घटा मह चंद्र छटाग्रिंग धकट धा धा त्रिपुंड राजे मुंड मा वक्षस्थल साजे कर त्रिशूल चम चम चम चम कत भरत सबार मार मद मर शांत स्वरूप अनूप सकल सुर भूप मुकुट मणि ध्यान धरत कल्याण कर उतरत मुनिगन नित धा धा दिन ता धा कृधान धकित टिकृ धकट धकित धान तान धकित टिकृ धान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला धान तान धकित टिकृ धान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला दान दान धगत टिक्र दान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला।

अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर धमार ताल। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे पखावज पर बजाए झपताल से। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

आदर बदल निदेघ दिघ कर कुठार काटत कुटिल तिरगड़ दाधा दा गणपति भग प्रथम पूज्य जग भाल लाल शुभ सुंद माल गले मुंड वीरा धागड़ धुम कृत धा दिन दिन चतुरा ननचित धारे दीनन की दीनता निवारे दा दाता प्राता शंख चक्र कर गदा पदुम धारे विष्णु विपत्ति विनाशन तिधरे धुमकृत धुमकृत धा टकिट धिकिट धा बम बम शिव शिव अगड़ बम डिम डम रु डम डिम डिम डिम तक तक तक धा धा डिम डिम तक तक तक धा डिम डिम तक तक तक धा डम रु डिम डिम डिम तक तक तक धा धा डिम डिम तक तक तक धा डिम डिम तक तक तक धा डम रु डिम डिम डिम तक तक तक धा धा डिम डिम तक तक तक धा डिम डिम तक तक दुर्गा।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DGH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर झपताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित गोपाल शंकर मिश्र. राग है यमनी बिलावल. इसमें आपने आलाप जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत की हैं जो क्रमशः रूपक एवं तीन ताल में निबद्ध हैं. आपके साथ तबले पर संगत की है उस्ताद इस्माइल दद्दू खान ने. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग यमनी बिलावल इन विच ही रेंडर्स टू कंपोजिशन सेट टू विलंबित रूपक ताल एंड ध्रुतगत इन तीन ताल. द एकम्पेनिंग आर्टिस्ट इज उस्ताद इस्माइल दद्दू खान ऑन द तबला.

अभी आप सुन रहे थे राग यमनी बिलावल। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यह है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग जयंत मल्हार। विलंबित तथा द्रुत दोनों गतें 3 ताल में निबद्ध हैं। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग जयंत मल्हार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में राग जयंत मल्हार। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। तबले के साथ संगत कर रहे थे पंडित यदुनंदन गोस्वामी। हर पल हर समय DTH रागम के लिए ये थी आकाशवाणी भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी। विलंबित गत छप ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है नवाबली ने।
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a Vichitra Veena recital in Rag Darbari by Pandit Gopal Krishna. The Vilambit Gat is set to Jhaptal and Dhrut Gat is set to Teen Tal. He is accompanied by Nawab Ali on the tabla.

Oh, my God.

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग श्याम कल्याण। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबार।

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग श्याम कल्याण बाय पंडित गोपाल कृष्णा। ही इज अकॉम्पनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं आर आर पांचाल के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे आर पांचाल के स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में अब सुनते हैं समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना, जिसे गाया है रंजना पेठे और कीर्ति शिलेदार ने। संगीतकार है आनंद मोड़क।

रंजना पेठे और कीर्ति शिलेदार के स्वर में आप सुन रहे थे समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना। संगीत था आनंद मोड़क का। आइए आप सुनते हैं पंडित राव नगरकर के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना।

0: संत तुलसीदास की भक्ति रचना आप सुन रहे थे पंडित राम नगरकर के स्वर में। आइए आप सुनते हैं संत मीराबाई की रचना सुधा मल्होत्रा के स्वर में।
1: तेरा कोई नहीं।

अभी आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा के स्वर में संत मीराबाई की रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब हम सुनाने जा रहे हैं बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी बबन राव नावड़ीकर के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत एकनाथ महाराज की, स्वर है मालती पांडे का।

शरद जांबेकर ने गाई। संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। आइए आप सुनते हैं रेखा रायरीकर के स्वर में संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे रेखा रायरी करके स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आगे की भक्ति रचना है फिर से एक बार संत एकनाथ महाराज की वसंतराव देशपांडे के स्वर में। संगीत दिया है डीवी करंदीकर ने।